0: हाँ जी ग्रांड उर्दू को तस्वीर रेडियो अमन एफएम 86.4 बटा ग्राम पर ब्रांड जुंदी 4K कॉस्मेटिक क्रीम पता अनसरा तस्वीर यो लसन तो दुलस बाजू पूरी और 4K कॉस्मेटिक क्रीम ब्यूटी क्रीम एक्नी क्रीम स्ट्रॉबेरी फेस वॉश एक्नी फेस वॉश शैम्पू तेल लिविखतो दी पारा दहर से बताओ तो मिलावी गिरी मोहसिन शाह पर दुकान की प्रोग्राम तो दियो लसन दुलस बाजू पूरी और माजरात को तसना छ कमो कसान मुंग तक कालू नौकर खबर उकड़ी यहू डीरे शुक्रिया औ कमो कसान छ कालू को मंग दियो काल वानो रे द उचतनक श्री मजबूर दिवजना जे टाइम दिवजना नु अगुता माजरत को कमो कसानो चि बिल्कुल कालो नक प्रोग्राम सिर्फ वावरी द नदी अगुडी
1: तासो औरे रेडियो अमन द अमन आवाज तासो आवाज.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक आजमत

0: जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, पत्थरों क्यों मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों क्यों मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुम्हें को कभी अपना खुदा रखा है, जिसने तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वली अपकार दी दुनिया बता नस्तरगी वक्त की, वली अपकार दी दुनिया बता नस्तरगी वक्त की, पमीना मिना कुल ताकत ले नवे माँ बचल वली कता
1: خوشحال بالکل.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।

पाकिस्तान ॾे आस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ क़ौम वनडे सीरीज़ लाइ पारा टीम ऐलान करे दे। बाबर अज़म ऐं नसीम शाह टीम तौसी शविद, रिज़वान ऐं फ़हीम अशरफ ड्राप करे छविदी। शाहीन शाह अफरीदी द कुमी टीम, कप्तान टकली शविदे आस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ स्क्वाड खे। सलमान अली अग़ा, अब्दुल समद, इबरार अहमद, अहमद दनियाल, अरफात मिनहास, बाबर अज़म, हारिस रूफ, मा सदाकत, गाजी गोरी, नसीम शाह, रोहिल नज़ीर, साहिबजादा फरहान, शाहदाब खान, शामिल हुसैन ऐं सुफियान मुकीम शामिल थी। वॉलीबॉल खोदर टीम ना फहर जमान सई मयूब द इंजरी लवजी, यस्तली शविदी, उस्मान खान द बी मरई लवजी स्क्वाड की नद शामिल करी शवे। अवदीसरा मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, फैसल अक्रम, हुसैन तलतम द वनडे सीरीज ने ड्रॉप करी शविदी। वॉलीबॉल अख्ता क्रिस्टियानो रोनाल्डो शानदार करकदगी मुजाहिरा करे द अल नसर, सऊदी प्रीमियर लीग अव्वल टाइटल कटले दे। अल नसर द माकत सलोरियो गोल सर शिकस्त वर करे दे, रोनाल्डो दुआ गोल कुड़ी दी। सऊदी प्रो लीग अहरी मरहले के क्रिस्टियानो रोनाल्डो द शानदार करकदगी लवजी अल नसर द माकत सलोरियो गोल सर शिकस्त वर करे टाइटल पनम कड़ी दे। मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तर महातिर सलविश्त घंटों पर दौरान करक लकी मरवत बनो और टांग खोश जीनो अलकों की नरे बरान शवे और ज्यादातर अलकों के मौसम ओचो गर्मो द मौसमियात महकमे लखवाविली शवे दे च करक लकी मरवत बनो और टांग खोश सीमा के बसबा। मौसम ओचो गर्मी द मौसमियात महकमे तर महा करक लकी मरवत बनो और टांग खोश सीमा के नंजियात न ज्यादा दर्जे हरत पग दिश डिग्री सेंटीग्रेड और कम न कम सलीरिश डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शवे। उप हवा की दनमई तनासुब दिरिश फीसद और द हवा रफ्तार 15 किलोमीटर यो घंटा रिकॉर्ड करे शवे दे। वाली दूसरा करक लकी मरवत बनो और टांग खोश सीमा के बनवर सबा शहर 2 मिनट द पास 15 बजे सिरोही और महाम 11 मिनट द पास 2 बजे बप्रयोजी। दऊद रेडियो अमानटसी अशार्य 4 नेटवर्क हम खबरों दनोर हम खबरों नौ दिल दारा रेडियो अमानटसी अशार्य 4 करक टांग पटेग्राम फेसबुक पेज लाइक रहे उस न्यूज टीम सरा माता राख रहे जजत दलू अल्लाह पामान।

वेलकम बैक, वेलकम बैक। यो वरी भी अपरों के वेलकम खुश आमदे। जी आई नो, खैर रोले, खैर रोले। कम कम खरका बेख दी मरा। आवाज में क्लियर देखे ना, बयान न मनाए। डॉक्टर साहब मुझे प्रोग्राम कहो ले, आवाज में बेखी डाउन होगा ना। उसको आवाज बिल्कुल ओके शिके ना, तो सही देखे ना। सोचना प्रोग्राम जम दे, गेम शो के अंदर जम का कम गेम दे। अगर तभी लिखी कि रिवर्स बादशाह या रिवर्स क्वीन या रिवर्स मलका का ना, नो बिल्कुल जनाब देखिए बता से भी जबरदस्त होता है। जुमला वाई माँ कॉल बंद है सही दम। अगर जुमला बता से उल्टा हुआ है लगा, फॉर एग्जाम्पल माँ सरा मोबाइल दे मोबाइल सरा माँ हाय है ना। और माँ चाहिए इसके लिए दे, और इसके लिए चाहिए माँ हाय है रखे छिना जो मैंने जुड़ी की तरह फारसी था। एनीवे जनाब कार में वापस चलेगी। जबरदस्त जुमले ठीक मिली जबरदस्त ससुराल प्रोग्राम से जुड़ो। बिल्कुल जनाब आपसे कॉल का वोल्यूशन 0309 711 8899 SMS पर 85 83 मंदिर सबसे में से शामिल हो जी। अस्सलाम वालेकुम आई मारे शाह फ्राम बाला बांडा थोड़ा मिलने वाले तो सलाम वालेकुम अस्सलाम। बल मेरे से जगल ताज मामू कैसे हो, सबको मेरी तरफ से सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। बल मैं से जगल अस्सलाम वालेकुम ताज भाई जमगा खैसर और जाना तासु सिंगे तो बिल्कुल टिक टाक ही औ सम इंतजार मुको जहाने नूर औ टोल पास है टोल पास है खा खा दस आओ कर सलाम मायरा आओ सीमा आओ टोल जिन को तो सलाम आओ जमूंगा मायरा को जाना सम डेरा वफादार दा और प्रोग्राम की अजरी लगी बिल्कुल जिनके खुद निकल दी او ویدا جنګه خورو کې دي دا ولی جی نانا وسو ټوله پر ټوله برازي ها هانیا نور ډیره زته منه نه کو ټوله برازي ها ټینشن متا سنا له مړه بل مې سره ځاګه لدی جی سلام نتا اج بھائی تاسو څنګه پروگرام زبردست یال سشت سلام آیا مایرا ډیره زته منه نه جی بل مې سره ځاګه لدی موست ویلکم تا جی تاسو ته او ټچ والا سلوټ اچھا جی او ځاګه دا اجی غانا سونګ چې دا ته پلی کې کنا موبائل کے دن ہو گیا مس کے

0: ऐसा सजी रहते तमाम ना कहो एनी वे कॉल तरफ गुरु सर कॉल कहूँ की सुख दे कम से नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम सुख दम से ना
1: जी
0: बासित बासित प्रोग्राम के हर के लिए भाई बासित तक है टीम जबर के राजी का ना गेम की साख ले गेम की साख ले खा जी तास तो पारे कम जुमला मास के मौजूद दा तास रेडी के जुमला दा तजवायम खाम जान रेडी के रेडी है तासो हाँ तास दोबारा चिकन जुमला दा का दा मानन बिरयानी खड़ल दा
1: मानन बिरयानी खड़ल लेगी
0: आओ
1: खड़ली बिरयानी में मारा
0: हाँ ना जी ना गलत हटेर से तम मतलब कहूँ वासित दसन खेल से जो के पहला हाफिज बिल्कुल जिन्ना दाऊ सर वासित जिमने गलत अभी लगा ना है ना औताज में था पिंजर के सांच कम दे डेर आसान टेस्ट के फेल शलब इधर वजन ओम नो किमा बजाओ फर करे हो ताज़ूंगा खोर कहीं दा और उजिंग तो मिसेज कहीं डेर ऐसे तो मन ना तो खुद आसान क्या आ रही का ना तो आईडी ग्रांड दिखा बिल में ऐसे जागा लेते जनाब डेरो मुनाफिको पखंदा बंद खुपोशुम दबाजो दे लासो के तस्बे सड़े दो के अच्छा जी अदा सीधा एनीवे कॉल तर तज गुरु मुसराम कल को उनके सुख दे कम जाने दे। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एनीवे अबे कल बोख जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जमावाज राजी दा सुता
2: जी जी बिल्कुल राजी
0: मेरे से दस प्रोग्राम के हर कले सड़े में शिफा खैराली देता वायु
2: अरे रहमान ने दे वाला मक्खन वाला देख कर देख ना खरी
0: खैर खरते मेरे से दसो खे
2: खैर दी जी अल्हम्दुलिल्लाह
0: दर तो गेम आसान दे ग्रैंड दे
2: गेम को ग्रैंड दे करने दी
0: ग्रैंड दे मड़ा अबू मोहम्मद सिंह का फटाफट जवाब आत रख डाला
2: अब बादम खड़े दी जाना
0: कना
2: जी
0: सही तासो गेम की साख लेके ना टीम जबर की राजी तासो कना जेर के जबर के का
2: ना
0: खै जी तासो तो जुमला वाई मतासो बारा का जुमला सही का वेटिक दा खा तासो बारा जुमला दा दा पेट्रोल डेर ग्रान शिवी दी
2: पेट्रोल डेर ग्रान शिवी दी
0: आओ
2: शिवी दी पेट्रोल ग्रान
0: गलत था जी गलत था डेरा मजना को अमीर से

0: हाँ हाँ जी, बस उस दमी ने इंतजार दे खाय पर दा मेसेज के मिला दा शामिल कम दा दरअसल मेसेज दी विनन विनन दा गेम खुसा आसान दे बट रामियानो तासल अवली नाराजी अबू मोहम्मद खो माशाल्लाह कार कर दे बिल्कुल दा शान दा अबल मेसेज आ गले दीजी
1: दिले वने क्रमा सुरक मिस दिकड़े दे
0: सजा दू दिखे दे जरदर अल्फाज भी लिखो ना से कभी नर रख ले